0: के तपाईलाई थाहा छ,
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
0: बिस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकलछु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी, मनीष मेडिकल हर टीकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट
5: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9800647।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा के उस तबातीन गति लो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं है
1: ओ हो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर इटी रहा था
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटा कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का अनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट्ठी
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: भर्ना खुल्यो
4: यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलालीमा सामान्य चिकित्सा SA कार्यक्रम अध्ययनको लागि भर्ना खुल्यो
3: फारम भर्ने मिति 2083 वैशाख 29 गते देखि जेठ 13 गते सम्म
4: अनलाइन फारम सम्बन्धमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलालीमा आएर सहयोग लिई फारम भर्न सक्नुहुनेछ अथवा www.ctevtexam.org.np मा उपलब्ध गराइएको ITMS अनलाइनमा भरी सबमिट गर्नुपर्नेछ
3: सामुदायिक क्याम्पस भएकोले यसै कार्यक्रममा ₹3,23,200 शुल्कमा मात्र अध्ययन गराइन्छ
4: आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भएको व्यवस्थित प्रयोगशाला र विषय विशेषज्ञद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिन्छ
3: आवेदन फारम शुल्क ₹1,000 लाग्नेछ
4: फारम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू
3: SEE, SLC वा प्राविधिक SLC को शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि नागरिकता वा जन्म दर्ता लक्षित वर्गमा फारम भर्नु परेमा आफ्नो वर्ग खुल्ने प्रमाण पत्र र स्पष्ट मुखाकृत देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
4: नोट सामान्य चिकित्सा HA अध्ययन गर्नको लागि न्यूनतम 2 GPA हुनुपर्नेछ सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 091-560-203 98-58-48-709 98-48-67-76 र 98-45-45-39-97
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
4: अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ
3: ससानो कुरामा तनाव हुने
4: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
3: कुलटमा लाग्ने
4: छटपटी हुने
3: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
4: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही जेठ 16 गते र 23 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला
3: टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब हमारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: आई गई क्या आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाईकन आएकी होली मेरी चेली।
3: तनखा खाईकन होइन बुवा, तनखाले भोलि का दिन के ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भन्या बुवा, पहला महीना को तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ मित कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
2: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
3: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, होइन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 नि सम्पर्क हरे।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान पिछाई घरक भिटा आम्ही निके निवराइ छौ कि का खेतो म सखारन कलाक मिनी लै जाई पर्ना रह
1: आब ओराइदा डांचे बादा
2: ले ले वही मिनी बना कर भेजिए तू लै जा दिएस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भिटा म त बिलाको बा माटीले सब दिए पर का हाँ सब दिउ अय्या दाई सब पका डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटल छै
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल
2: अरे लेव हाली क्यों बाटो मर छै मुस्कान बट सब पका डरलस लेव हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सब पका करलस कल
3: ना त्याव काकी तो मुस्कान न्या क्या का स्थान थक बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास न सुटाई हलचल नी का राखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो
1: ता
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फाफर बना दी ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकत कटला हाथ भर नहीं चला ना
2: बैठा भैया सबको कटलक ठाउ आंजर पांजर चीर का इंजेक्शन ले तान का अथवा मुंह ले सुस का बीस फोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबको कटलक घाव आंजर पांजर कटना डगना चुसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबको कटलक ठाउ और लगा दी उठा ना नानू
3: उठे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानु बुझनु
3: बेन काकी रामेश्वर मोटरसाइकिल लिखाई कही झट्टा से झट्टा साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कलर से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाई दादा का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम्हें दाता हम कही का हेरा पुरा हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुला हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में कुछ सर्पदंशक उपचार कही जिना रही था हो वहाँ ले जाए पर मुस्कान होना
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला
3: लेव लेव लेव काकी मुस्कान होना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा ला रही झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए कला से मुस्कान होना बताई सेक जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहाँ कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल स्थापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के का समझन साफ फिर काट से था संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से भूख सपो विषार अलग निरलग पहचान कह सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मन यहाँ बताई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सपवा डसलक मने यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली इहीले ऊ मने एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी क्लाक वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैथ पत्ता लगाए क्लाक आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सक दी था।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: काफी कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटाका था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकटो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कब्बू लड़का का पियरी थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरो ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए। एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हरटिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य मावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम मझेर के सलाह के बैठक सकू रेडियो प्रेमी मेघर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहत मैं टेक में बैठ के साथ देते हैं बाबू रत्नापन मगर और मई बाबू अपनी अपने संघ्या मैं मिशन संघाई कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हो भी मई फेकदमे आराम बाटो अपनों के फेकदमे आराम हुई भी कहना भरपूर आसन बाटो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटार में यात्रा में जहां हुई भी जोन ठाव में है वह ठाव से कार्यक्रम में सहभागी जन भी कहना मैं आप लोग जानकारी करते बाटो तो कार्यक्रम के शुरुआत में एक ठोर रमाइलो गीत जोड़ब अपने सही डायल करते कर भी 0915-61-2 के लाइन में कोई भी टैलेंट गीत गजल भावना मुक्त चुटकिला शायरी शेर चिरे चुरुगन की आवाज जानवर की और निधन के नक्कल केकरो कैरिकेचर कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा सुनाएक लगा इटे कर भी तब समला कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश करब एक रमाइलो गीत से गीत के पास समय नहीं बाटो डायल करते कर भी 0915-61-2 कलाइन खुलाई बा कार्यक्रम में सहभागी जनते कर भी

0: हजुर, माया करम तुम्हें जन्म जन्म बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम में जोड़ी सत्यनारायण कठरिया और समीक्षा चौधरी आवाज मेरे कार्यक्रम में और सुबेश कठरिया के शब्द रचना में रमाइलो गीत रहे कार्यक्रम में मिशन और मेके साथ भेटने बाबू रत्नापुर मगर और यह रेडियो टीकापुर FM 101 MHz जोस्त के हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर FM हमारे पात्र मार्फत अपने हम सुन सकती का नाम आप जानकारी करते बाटो इंटरनेट के पहुंच रहा संघारियों के अपने ठाव से संघारी कट्ठे गर्मी बा अपने के ठाव में बिल्कुल पकाई भे लागत में एकदम गर्मी बा नहीं घाम से एकदम बचेक पर्ना फेन बा घाम सहेक पर्ना फेन बा घाम में काम करेक पर्ना फेन बा का कर दी तर ये चीज एकदम ख्याल कर दी हमरे मनई हो गए पके भी हमरे अपन अपन सहजता पके भी अपन अपन ठाव मतलब सहजता वातावरण बना के काम करत हुई भी और काम करना सोच बनाई थी भी करना लागत में तो कार्यक्रम में सहभागी जन टिकर भी शून्य 91 5 61 255 अर्थात 0 9 1 5 6 1 2 5 5 कोई लाइन में आलबाटे मैं बोल करना चाहूँ के उदय कहाँ से हजूर राम राम
1: राम राम हजूर
0: नारायण जी हो
1: हजूर
0: कैसे बा नारायण जी के हाल खबर
1: बढ़े बात अपने सुनाई
0: हमारे एकदम मजा बा नारायण जी आज का आज कठे गर्मी बा बाहर लिंग
1: अरे चोटगर बा
0: आज जोरदारे बने
1: जोरदारे बा
0: ओहो तो आज हमन कहाँ से समझली
1: आज बाजार और बात हुई 14 नंबर दीपो कटेश में नाश्ता करायला
0: 14 नंबर माँ बाटिया भाई नाश्ता करना बेला होगी नहीं
1: हजूर
0: ओके
1: पानी पिए कपल
0: ओके तो कार्यक्रम में सहभागी जन जनैली एकदम खुशी लागल अनि अपने उकरन के अपने उकरे खेती करती कि नहीं करती नारायण जी
1: अरे खेती कर भी नहीं तो का खेबी खेती कर भी तब तो खेबी
0: तब तो बिहार वार पके पे छीट से कल हुई भी
1: हजूर काल से बीर भी वो से नो कह पर
0: काल भक्कर बोली नहीं
1: दुई दिन हुई लू दुई वहीं बोई लू दुई दिन लगे नो कह पर
0: इस साल कैसे धान लगे ना बिचार में कैसे धान छीट ले बाटी
1: हमरे बहुगुने धान है
0: धान एक नाव बहुगुने
1: हजूर
0: कैसे हो ये मसीना हो कि मोटा हो
1: जाट मशीन थे हो जाट मोटा थे हो मध्यम साइज के हो
0: मजे फरक नहीं
1: हजूर
0: ओके
1: 3 साल हो गए धान लगा
0: अच्छा
1: मजे फरक
0: संतुष्ट बाटी मजे बाटी खाइना फिर मजा बा ठीक है नहीं
1: हजूर
0: ओके कार्यक्रम में सब आगे जाने एकदम खुशी लागल तो आज हमन का सुनेबी
1: छोट मोट मैगर गीत सुना दे हजूर
0: ओके लिस्ट शुरू कई धारी तो जोर जोर पानी पीसे कल हुई शायद अब गीत सुना दारी
1: उत्तर दक्षिण तले घर पूर्व पश्चिम घर चली घर कान फूल मैने गने चल उत्तर दक्षिण तले घर पूर्व पश्चिम घर चली घर कान फूल मैने गने चल उत्तर दक्षिण तले घर पूर्व पश्चिम घर
0: ओके धन्यवाद नारायण जी मजा गीत सुनैली अब हम एक गीत सुनाब अपने लगे अपने किन किन समझावी नाम ले सकती
1: सबसे पहले अपने हो रत्नापुर बगर है और जटादी मोर चिन्हल जानल नाथ पाथ ही नारायण चिन्हा ने चिन्हा सब कुछ हम कहते बाय बाय
0: हजुर राम राम वहाँ फोन करे नारायण चौधरी जी रमाइलो गफिल वहाँ से अपने के हमारे कार्यक्रम में सहभागी जन टिकर भी 91 5 61 255 अर्थात 0 9 1 5 6 1 2 5 5 लाइन एकदम खुला बा कार्यक्रम में सहभागी जन टिकर भी कार्यक्रम में एटे कर भी का नाम आप जानकारी कर दी कार्यक्रम में फ्रेंड्स एक ठाव हमें गीत जोड़ अपने चाहिए डायल करते कर भी 91 5 61 255 का लाइन खुलेगा तस्वीर इंजॉय करी रमाइलो करी एक गीत से

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत के पाछ फ्यान्स स्वागत भयो कार्यक्रममा कार्यक्रममा बाटोमा हामी छन् निकेशा देहतै बाबु रत्नापुर नगर और ये हो रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज और हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्रो मार्फत हाम्रो सुन्ने ठेकानामा एप दुकान जानकारी करते बाटो जे जहाँ हुई बिख्या तमें बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विचार में यात्रा में जहां रले से भेन कार्यक्रम में सहभागी जनाइबी अपन कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा अपने ठन हुई कर से हमारे सुनाई लग 091-561-255 के लाइन में हमन डायल कर दी और कार्यक्रम में सहभागी जनाइबी का नाम आपको जानकारी करती बात हमने हरेक अथवार के सोमवार मंगलवार बुधवार और बिहीबार हम दिन के एक से करीब करीब 1:45 बजे सम आई थी संगारी एकदम गर्मी बा गर्मी बढ़ गिर बा काकर व्यस्त हो प्रत्येक साल गर्मी अस्त के बढ़त सीजन सीजन समय अनुसार गर्मी चढ़ते बात हो उही के हमरे सबको जाने झेलक पड़ना वो के हमरे सबको जाने पंचायत पड़ना रहत उ सबसे सहक पड़ना रहत कहे कि समय अस्त हो इ समय संगे हम रहन चलक पड़ना रहत तमारे अपने फिर हमारे कार्यक्रम में सहभागी जने भी करना में अर्जी करन रमाइलो गप करे रमाइलो गप कर भी और अपन कोई भी प्रतिभा रही काल से हमारे सुना एक कार्यक्रम में सहभागी जने भी सुने 091-561-255 अर्थात 091-561-255 लाइन खोले जहां रवि जोन ठाव में हुई भी गर्मी समय है सदुपयोग करे कार्यक्रम है रंगीत बनाए कार्यक्रम में सहभागी जने भी करना में अपने अर्जी अनुरोध और निवेदन करम करीब करीब 1:45 बजे से हमारे संगे संगे यात्रा कई देवी का नाम है जानकारी कर दो साथ में मजा मजा गीत संगीत में अपने होगा सुने लेने बाटो तो डायल करते कर भी 091-561-255 के लाइन खोला हुआ फैंस एंजॉय कर बैठा रमाइलो गीत से गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी 091-561-255 लाइन खोला हुआ

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतके पाछे फेन्चे स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रममा बाटो मामिसन हामी के भई सात बेटीबाटै बाबु रत्नापुर मगर अब यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz मार्फत आफ्नै चाहिँ हाम्रो सुन्तीबाट सँगै भर्खर रेडियो खरली विकास यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz उसले कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मार्फत आफ्नो गमन सुने सक ठिकानामा आफ्नो जानकारी गर्दै बारो त जे जहाँ भी अपने ठाउँ से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाइबी और कार्यक्रम में चाहिए आईबी और हमारे संगे रमाइलो गप करके जे भी कानामा अर्जी करम तो कलक लाइन खुला बा 091-5-61-255 का लाइन एकदम हमारे खुला कैले बाटी फटाफट डायल करबी और कार्यक्रम में सहभागी जनाइबी कानामा आफ्नो कान मैगर अर्जी करती बारो तो डायल करते करबी अति बारे के व्यापारिक विषय मर्जाई सर्ट कमर्सियल ब्रेक ब्रेक के पाछ समय नै बाटो रेडियो स्वर्ग कम्पनी जेबी तसंग एक व्यापारिक विषय विषय के पाछ समय नै बाटो
1: सापन कुछ नहीं कराई सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गई था कुछ कराई वो सब कुछ सांप बिखा थे नहीं रहता
2: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी ना तो दाई
3: लिया नेपाल में पाजना बिखा सांपन का विषय मसू एक थोड़ा ठह गरे जो खास कह रात समय में घर भीतर बैठ से ये कटला से निबाई फे सकत तर कटला पाछ देह भाग जो निचलना कह सास फैर जो निशेकना में से लक्वा हो सकता और डोम जो बड़ा रिसाह मेरी रथ निकर फाट फूले थ डोम साप दिन व रात दुनू में देख पड़ना वो खास कह संजा बिहान देख पड़ निकर कटला से फिर लक्वा हो सकता वो और कैली जाटक साथ निकर कटला कल से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत थे पाची होकर रकत बहना हुई से था उसने कहा हमार देशक तराई सबको भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनकार ना बाधे सा ई सांप 10 लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
4: बर्खा छा को अनाज बिक्री न समय में सापन का कटाई अथवा जसाई का घटना धीर मिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा ना सीधे सापन का जसाई का घटना धीर मिना कर लग पा जाए
5: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वो फिर यदि सपा 10 डारल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

हजुर, व्यापारिक विश्रामके पाँच पाँचै स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रममा बाटोमा मिसन विकास साथी बाबु रत्नपुर मगर और यो कार्यक्रम मझेरी मझेरी में बाटो में मिशन और मिकी अब साथ देते बाबू रत्नपुर मगर और अपने सुन्टी बाटी रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज। अगे संघारी पूजा अपने संग ई व्यापारी विश्राम के पास में देव ने बतवा के फैन से शीतर शीतर महसूस कराक लगे एक ठाव रमाइलो गीत जोड़म। गीत के पास में नहीं बाटू अपने डायल करते कर भी 091-5-61-2 से पसंद के लाइन खोल बात अब समय एन्जॉय करी रमाइलो करी ई गीत से।

हजुर, सास से सास मिला के छैली होइनु मै तहरे दिवाना बेलकुले रमाइलो गीत कार्यक्रम सुन्दी सुन्दी सङ्गारीको कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे लागल टाटा भाई भाई के जाना बेला हो गेल बा उमा यात्रा रेडियो सुनके साथ दिले अपने सबको जन देउजु धन्यवाद डेटी अन्तिम एक ठोर रमाइलो गीत छोर्ती मै मिशन आज्ञा छ हम राम राम जयदेव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पर शुभ रहे रेडियो टीकापुर एफएम सुन्दै गर्बी।

0: फुका पिएर ठक्क बिपिएन सिलेर ठक्क बुझलै फटाका आजि ठक्का काकना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आन्ल से लड़का सामान निहरे
1: ओहो ई बुढा लेख्ने का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई ठक कबू पेंसिल हेरा कई ठक कबू झोले फटा कई ठक बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: था कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हे रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिगापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालू खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष

0: बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे गुवा जागिनि न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
1: अदि गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास त रह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाकान से के कतरा सुगर बनाकान लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 और 9846239261
2: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो
3: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ
2: पढाइ हुने विषयहरू
4: अनिवार्य नेपाली
2: अनिवार्य अंग्रेजी
4: सामाजिक गणित
2: ऐच्छिक लेखाशास्त्र
4: ऐच्छिक वित्तशास्त्र
2: ऐच्छिक अर्थशास्त्र
4: कम्प्युटर विज्ञान
2: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
4: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि
2: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि
4: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि
2: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म सीमित सीट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ थप जानकारीका लागि 091-560-738 091-561-446 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77
3: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संध्या 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने कुरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारा पात्र और नेपाली पात्र में फेसबुक हलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से सिकल एनीमिया थालासीमिया लगायत के रोग के सचेतना के लाख अभिमुखीकरण कार्यक्रम बाल बालिका की मानसिक स्वास्थ्य समस्या में पहचान तथा प्रशासन संबंधी अभिमुखीकरण समस्या अलग बाल बालिका साइकोलॉजिस्ट से ऑनलाइन सेवा देना आज के घटल सुन चांदी के मूल्य ओ एशियन गेम्स छनौट इंडोनेशिया हटाईकी नेपाल सेमीफाइनल में पूरा खबर सिकल एनीमिया के क्लिनिकल प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एक्सपर्ट तथा वरिष्ठ कंसल्टेंट डाक्टर राजन पांडे स्वन स्वास्थ्य समस्या के रूप में अलग वंशानुगत रूप में सन्ना रोग सिकल थैलेसीमिया दुनू में प्राथमिक में देखे काम करपना बोटिलो कैलाली के टीकापुर में आयोजित सिकल एनीमिया थैलेसीमिया लगायत के रोगों के सचेतना के लाग पालिका स्तरीय अभिमुखीकरण तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम में डाक्टर पांडे सिकल के धेरोसिन समस्या न्यूट्रिटी बोटोटीए मह कम बुद्धि पुगैलक वंशानुगत रोख सुने मझरना सेक्ना बोटिलो टीकापुर नगरपालिका के आयोजना महिला कार्यक्रम में बच्चा रोगी हुईक्लाक दुनू रोगी हुईलसेकिल बच्चा रोगी हुईना बोलेटी एकजना बिरहमेहुक और निरोगी हुईलक बच्चा बाहेक केली खुईना ओ महफे परामर्श लेके भोज कलशे बच्चा निरोगी जन्मना बोटिलो तथ्यांक के अनुसार सबसे ढेर बढ़ी सिकल सेल बिरहमेहुक नाइजेरिया छिमेकी देश के भारत सन् 2047 सिकल सेल निवारण करना लक्ष्य लेलबाट थारू जाति में 11% सिकल सेल के समस्या बाउमह 10% बाहेक 1% रोगी रहलबाट लम्डा लौंडी में एकजना नर्मल हुए थे और रोगी हुए से भोजकर फरक नहीं पना वहां के कहवा कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के सिकल सेल फोकल पर्सन विमला गेवाली अलग दिन में परीक्षण प्राथमिकता देना भोज कुंडली बारे बढ़ी परामर्श देहपना आवश्यकता अलग बुटिलो बाटी सिकल सेल प्रभावित दुखपट्टी हलबट्टी परामर्श तथा निदान के लायक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना टीकापुर पहिलो पालिका हुलक बोटिलो गेवाली 2081-82 में कैलाली में 28,761 के स्वास्थ्य परीक्षण कलक सिकल सेल के बिरमुख 740 फेला पर्लक बोटिलो टीकापुर केन्द्र संचालन कैलारी गांवपालिका के बिरमुख 1,000 यातायात खर्च उपलब्ध करना कलक जानकारी दिल टीकापुर में 1,914 जना के रगत परीक्षण कलक 326 जना में सिकल सेल ट्रेट व 80 जना में कड़ा सिकल सेल रोग देखा पर्ल नगरपालिका जानलवा टीकापुर के जनस्वास्थ्य निरीक्षक केवल सिंह सार्की 1,83,00,000 में बनलक बहुउद्देश्यीय भवन स्वास्थ्य सेवा दिना प्रयोग करना बोटिलो वहां एकीकृत मोडल मसे स्वास्थ्य सेवा दिना प्रयास हुईलक बोटी शहरी स्वास्थ्य आवश्यकता सिकल सेल न्यूनीकरण प्राथमिकता हुईलकी सेवा शुरू कलक बोटिलो सिकल सेल थाला सीमे के कारण छाई हम बिरमे हुईलक नियमित रगत चढ़ाई पर्ना हुईलक आपना फेदी और कठिन हुईलक एकजना अभिभावक बोटिलो और सिकल सेल थाला सीमे के बिरमे आपन उपचार के लगायत को नफे धीर कठिनाई भुक्टी रह बोटिलो टीकापुर अस्पताल के लैब टेक्नोलॉजिस्ट मरीज मानभूल परीक्षण करना विधि बारे जानकारी दिलबाट कार्यक्रम में स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावल स्वागत करलक रही कार्यक्रम सह संयोजक कमल बहादुर रावल संचालन करला रही। जेठ 11 गते कैलाली के भदनी स्थित मुहानल्यान मावी 12 गते राष्ट्रीय मावी बेलुआ 13 गते त्रिभुवन मावी बटनपुर बिहीबार कर्णाली मावी टीकापुर में शिक्षक विद्यार्थी अभिमुखीन कर्लबाट विद्यालय में किशोरी में रूपांतरित विकास बढ़ल पाछ टीकापुर नगरपालिका के मार्ग अनुसार पालिका संघ के समन्वय में बाल हेल्पलाइन साइकोलॉजिस्ट लान के यहां सचेतनामूलक कार्यक्रम कर्लबाट चार विद्यालय के समय बाल बालिका और शिक्षक अभिमुखीकरण कर्लक सिविल नेपाल बाल हेल्पलाइन कैलाली के जिला संयोजक हरिलाल चौधरी बोटिलो कांति बाल अस्पताल के सीनियर साइकोलॉजिस्ट अंजन कुमार ढकाल समस्या मरलक बाल बालिका में तनाव जाने समस्या लागो सर सेवन में अलग अलग समस्या हुईलक बाल बालिका बढ़ी पैलक बोटिलो वहां कांति बाल अस्पताल में फोकल शिक्षक मार्फत समस्या अलग बाल बालिका ऑनलाइन सेवा देना सकलक बोटिलो ढकाल के अनुसार समस्या मरलक सक्कू बाल बालिका ऑनलाइन मसे चिकित्सीय के सेवा दिन मानसिक समस्या विद्यार्थी पहिचानका लागि शिक्षकमा समेत अभिमुखीकरण कर्लक बोटिलोबाट कार्यक्रममा कान्ती बाल अस्पतालकी सिनियर साइकोलोजिस्ट ढकालो साइकोलोजिस्ट अनिल शर्मा बालबालिका शिक्षक संघ विकास सम्बन्धी विकार चिन्ता व्यग्रता तथा तनावजन्य समस्या उदान चिन्ता बौद्धिक अपाङ्गता अटिजम हुलक बालबालिका गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या गणवर्षण डिसअर्डर बालिका के पढ़ाईमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्न व ज्यादा चञ्चली स्वभावबारे जानकारी दिलबाट यससँग समस्यामा फरक बालबालिका के लेखेक्न सकेको सल्लाहबारे समेत जानकारी दिलबाट समस्यामा फरक बालबालिका के दशौं आठमा फोन करके परामर्श लेह सिक्ना सुविधा बा यहाँ के फोन कलक समस्या पलक बाल बालिका के तुरन्त उद्धार करना व्यवस्था रहलबा बाल हेल्पलाइन कैलाली सन् 2025 व 322 घटना दर्ता कलबाट म 196 बालिका व 126 बालक रहलबाट हेल्पलाइनमा 2442 टेलिफोन ऐलक 4223 सँग सचेतना जगैलक 16 बालिका व 2 बालक के 18 जना कानूनी सहायता देलक 20 बालिका 19 बालक के 39 जना आपतकालीन संरक्षण दिलबाट संस्था के 61 बालिका व 47 बालक के 108 बाल बालिका शैक्षिक सहयोग कलबाट खोज खबरमा एक विश्राम विश्राम पाछ फेरि विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टीका प्रएफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाइ शाखा टिकापुर कैलाली
3: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
4: के गरौ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
3: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
4: तैले भन्छस् भने लौ जाम न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
5: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 0915600095 मोबाइल नम्बर 98484273059
6: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुवेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुन्जिना डाग देख पर्लसी हातद्वारा झमझम गर्ना तथा मास सुवाको बठिना हुलसी कुष्ठरोग हुइसेक्ठा
7: कुष्ठरोग महिला वा पुरुष जेहीफे लागसेक्ठा कुष्ठरोगको शंका लगेकी लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल आइएनएफ नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
6: महिला उग्र अस्पतालसम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्न घर पुरुष उग्र मद्दत गरी
7: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल आइएनएफ नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश
0: स्वागत बा स्थानीय बजारमा आज फेरि सुन चाँदी के मूल्य घटल बा सुन के तोलामा रू 5500 हो चाँदी के रू 215 घटल बा नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आस्था बवाल सुन के मोल प्रति तोला रू 285000 ओत्रह परिमाण के उज्जर धातु के मूल्य रू 4865 कायम हुलबा काली बुधबार छापावल सुन के मोल प्रति तोला रू 290500 ओत्रह परिमाण के चाँदी के रू 5080 म कारोबार हुइल रह अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम के अनुसार आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक औंस सुन 4520 ओत्रह नै परिमाणके चाँदी 77 अमेरिकी डलरमा कारोबार हुइटिरहल बा रौतहटकी उत्तरी भेकी किसान अब बेला मकै भित्रेना चटारमाबाट जिल्लाकी चन्दनपुर वृन्दावन गुजराव फतुवा विजयपुर नगरपालिका किसान हुक्रा बिहानसे सन्झैसम्म खेतमा मकै कटना घोघा तुर्ना ठेसर लगेना तथा मकै सुखैना काममा व्यस्त देखगिल्वा वृन्दावन नगरपालिका एक बलरीके किसान पश्चिन्द्र पटेलके आफ्नो एक बिघा खेतोमा लगेर मकै बाली भित्रिना दिनहु दसजना मजदूर परिचालन गरी काम कर्ती धलबोटिलोबाट मौसम बिग्रना सेक्ना चिन्ताले किसान मकै हाली भित्रिना हतार हुलक उहाँके काहीबा मकै पूर्ण रूपमा पक्लसे फे पानी ऐना छिटी हुना हुलक डरलेसे चटारमा कटिरहल बाटीका केहा बोटिरबाट फटुवा विजयपुर नगरपालिका तीनके किसान उपेन्द्र यादव फे गत हप्ता पर्लक वर्षाके कारण मकै भित्रिना ढिलाइ हुलक बोटिलोबाट अब खेतमा सुक्ति गर्पा अधिकांश किसान खेतमा व्यस्त हुलक उहाँके काहेरहल्बा खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछा फेरसे विश्वन्त्रे विश्राम मुदायक रेडियो टिकापुर एफएम
8: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
9: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
8: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्टा बनी हो ना वट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूमत जाए तो था पाए
10: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
11: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 4326
12: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
13: जेठ 16 गते शनिबारका दिन
14: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
12: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
14: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
13: डाक्टर आउने दिन जेठ 16 गते शनिबार
15: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772।
16: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
17: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ब्याग प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा आप खेल खबर मलेसियामा जारी एसियन गेम्स छनौटमा लगातार दोस्रो जीत निकल्ती नेपाली महिला क्रिकेट टीम सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नबाट महिला क्रिकेटकै दोस्रो खेलमा नेपाल इण्डोनेसिया 4 विकेट हटिलोबाट जीत केलाक। इण्डोनेसिया दिलक 114 रनके लक्ष्य नेपाल 19 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाके पूरा गर्नबाट नेपालकी जीतमा कप्तान इन्दु वर्मा सर्वाधिक 42 रन बनेलबाट 42 बलकै सामना गर्दै उहाँकै 5 चौकाकै मदतमा नट आउट 42 रन बनेर रहे। सोनी पोखरेल तीस रन बनेला खेलमा कविता कुंवर चौध रन जोड़लबाट अन्तिम समयमा आके केलिक छ बलकी सामना गर्दै सितारा मगर नट आउट तेह्र रन बनेला नेपाल विरूद्ध कसिलो बलिङ कलक इण्डोनेसिया केलाक शुभ आनन्द देवियो काइदे अरिनिया के दुई दुई विकेट हात पलक लक्ष्मी परमिथाव न्यौमन मेमी प्रियानी एक एक विकेट हात पलबाट मलेसिया के आयुमास ओभल मैदानमा बिहिबार टस जितके पहिलो ब्याटिङ कलक इण्डोनेसिया निर्धारित 20 ओभरमा चार विकेटके क्षतिमा 113 रन बनेला रहे इण्डोनेसिया केला कप्तानी पुतुआयु नन्दा सकारिनी अभिजित 52 रन बनेलाबाट असहकर निलु केतुत बेसी के रतना देवी तेसो नी मादे पुत्री सुबान देवी 13 रन बनेलाबाट नेपाल केलाक मनिषा उपाध्याय दुई स्थायी रिया शर्मा एक विकेट लिएरबाट इन्साग नेपालकी आफ्नो पहिलो खेलमा चिन्ह 19 रन हटेल रहे एसिया छनौटमा नेपाल र लक समूह बीमा चीन हो इण्डोनेसिया रहलबाट समूहकै विजेता बन्टी नेपाल सेमी फाइनल प्रवेश गर्नबाट समूह एमा हङकङ मलेसिया र थाइल्याण्ड रहलबाट सिकल एनिमिया थालासिमिया लगायत के रोके सचेतना केलाक अभिमुखीकरण कार्यक्रम बालबालिका की मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान तथा प्रशासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण समस्या अलग बालबालिका हाँ साइकोलोजिस्ट अनलाइन सेवा दिना आशु घटल सुन चादी के मूल्य ओ एसियन गेम छनौट इण्डोनेसिया हटेटी नेपाल सेमीफाइनलमा डिटा बक्ला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटी बक्ला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई टू एगार पांच छह बजे की खोज खबर सुन सीखी सामुदायिक रेडियो टीका प्रयासम सुनती रवि राम राम
18: फुला टूरे बारी में गई रही सपो का देली बीस निकार देवी की कह के लैके आयल बाटू
19: सपुआ कटलक बीस तक उपचार कर सर्पदम से उपचार केन्द्र में ले जाए पठा हूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सपुआ कटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
18: सर्पदम से उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहू
19: सर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था हस्तक्षेप चिंता नहीं पड़त
18: भाई ना तब ना तुम कुछ फेर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
19: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी
18: रे बाबू संदेश
19: गैरों का छत बाहर आता
20: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के खा जैन जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीवेनम निःशुल्क उपलब्ध करेला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहर लगा पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेक्दिठा
21: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
22: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
23: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
22: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
23: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
22: अब त म ढुक्क
24: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
23: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26 जमरापारी टिकापुर कैलाली
22: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
22: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
22: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्रेक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
24: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
4: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: सीधा संपर्क करी, ओ सीधा अदालत में थे जाय से जय।
1: हिंसा अपने फेनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz
2: अन्तरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।
3: अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाँत खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 98046 77417।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 98-49-85-18-08।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिलेर इठ कबु झनै फटाका आज इठ काकना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ई बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहा
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई ठ कबु पेन्सिल हेरा कई ठ कबु झोले फटा कई ठ बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस का टस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर्षणी
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी जब सम हमरे सबकू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुलके विरोध करी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी
4: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।